देख रहे सब जान जान के लड़को को ताड़ो मत ताड़ो मत तू मेरे बच्चे इन्हें मारो मत माना कि गर्मी बहुत है लेकिन हाथ जोड़ के कहता हूँ बेबी जैकेट तो उतारो मत